बोलो जे जन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां

कुड़ी दास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल कर हर शर्म त्रम का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मत्था टिका तिड़ धोती कखाई हथ श्री जगत कसाई नील वस्त्र पैर होवै प्रवान मलेस थान ले पुजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देख चौका कटी कार उपराए बैठे कुड़े यार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेर मन जुठे चुली परेन कहो नानक सच ते आई है सोच होवे ता सच पाई पौड़ी चित अंदर सब।

साई कर कमावनी तुर छोड़ी तिन्ने पाए नानके की बारी होर दूजी नाही जाए सो करे जे तिसे रजाए सो करे जे तिसे रजाए सो धे।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर वर्ण जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनपाओ प्रकाश अमित तोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत वन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कान हर बूंद बसौ रो मावल कुसुम बसंत गनंत नायावै राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावे पल्ले अमर दास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे हौ अपराधी गुन है गार हौ वे मुख मंदा चोर जार

एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सार अब पतियार क्या कीजै बचने तोर मोर मन मान जान कौ पूरन दीजै हम सर दीन दयाल ना तुम सार अब पतियार क्या कीजै बचने तोर मोर मन मान जान कौ पूरन दीजै हौ बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ बहुत जन्म बिछुड़े थे मादा

दास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछुरे थे मादा एहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवा चिर भयो दर्शन देखे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनाश्री भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पति यार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मानै जन कौ पूरन दीजै।

प्रेम सकत काल नानक ते मुख उजले केते छुटे ना जिन नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केते छुटे ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

पागल सहेली सुख भर सूती जे घर लाल बसाई सब सुहागण मन रलिया एक देवो रात मुरारी सगल सहेली।

दीनन की प्रतपाल करे नित संत बार गणी मन गार पस पशु नग नाग नरा तप सर्व समय सबको प्रतिपारे।

के उजले कहती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

रंग प्रंग नेक न जपन करते भाजिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम काबहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन शत्रु हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे।

नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जाब उद करख करा करतारा प्रजा तरत ताब देह अपारा जाब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार आप आपनी बूझ उचार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनादि असंभ।

जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार काची नत नह पेव आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाई पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक पयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगर हो दुष्ट जिते उठवत उतपाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताकि काल निकट नह है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहि उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब है बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं

वारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनह विसारी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरै घर ता तेरै सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संतहो शबद धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित घर सुभागै घर सुभागै शबद वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ।

Fíjate, बोल जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद ना सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ।

अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाउ नेत्री सत गुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाउ सत गुर से तीरतिया दरगह पाई ऐठाउ कहो नानक कृपा करी जिसनो एह वाथ दी जग मह उत्तम काढ़ी है विरले की चिरंकाल मानस जन्म निर्मोल पाई सफल जन्म गुर चरण शरण कै लोचन अमोल गुर दरस अमोल देखी श्रावण अमोल गुर बचन तरन कै नासका अमोल चरणार बिंद बासना पै रसना अमोल गुर मंत्र सिमरन कै हस्त अमोल गुरदेव सेव को सफल

है अहन सहज सुभाय दर्शन परसे आय गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसमदी नूर अर सहु कुर सहु चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दे साहु जिस पास बैठिया सोहिया सावना दा विसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दे साहु जिस पास बैठिया सोहिया सावना दा विसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। ऐसा नाम रतन निर्मोलक

केह लिख दुर्लभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अबिबिक राजे इंद्र संसर गृह आसन बिन हर भगत कहो केह लिख न विचार्यो राजा राम को रास जेह रस अन रस बीसर जाही रहा जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत यान अचरियत अनकश समझ न पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जिय दया कहियत यान अचरियत अनकश समझ न पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत

0: उन्मान हर हर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जानिए अकल गत गुर परवान जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सील सुनाओ सकत बदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरा।
1: सदा कलिव रहे करम शिक्षाचार ब्रह्म स्फूर्त जो

कोट सैन संग सोब कहत मज सोध जिसे दही पात खाए जियो। देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किनकनी शब्द चनतकार खेल पाए जियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके ईश बम ज्ञान ध्यान तरत ही ये चाहे जियो।

0: प्रगट सगल हर भवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म।
1: दृष्ट धरत तम हरण दहन अग पाप नाशन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करण शरण जाचक प्रतिपालन आत्म रत संग्रहण कहन अमृत काल ढालन सतगुरु काल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरै गुर जगत फिरण सी अंगरो राज जोग लहना करै।
2: सतगुर के माताणिया जुग जूथ समाणे अन पौ नेजा नाम टेक जित भगत।

प्रिय अहनिस सहज सो भये दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसाहो सज्जन सचा पातशाहो सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसाहो

कैसे करी पुकार दुख विसारण सेविया सदा सदा दाता रे साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दाता।

षडाय सोए सोण सोण मेरे कामणे पैर उतारा हो दयाल तेरा नाम तरा सद कुर्बान जाओ सर्वं सच्चा एक है।